गुनेगार शहर में नहीं बनेगा सेंट, बनेगा सेंट, यार बनेगा सेंट। मैन बिस छोड़ दिया, फील करा सेंटीमेंट्स करा हो। वो बोली बेबी आप ओनली चूगो, बोला मैं जानता हूँ सेक्सी।

Monday. इस हफ्ते में वो देखना नहीं बंदे. Shake that. घुटने पे हाथ, वो बचना नहीं चाहती नहीं गुस्से की बात. चार इंच लड़ करे पुस्सी की बात. Start हो जा. हसल है साइको सा दिन गया घर जवाब माइन होगा. मेरे आइटम को बोला तू सोच मत पैसों का. बात करो प्यार से. बेबी बात करो प्यार से. सत्रह की नारी वो पूछती मैं कहाँ से.

नहीं, लड़कियां बचपन से बच नहीं, सत्रह की नारी ये दिल्ली का सच, इलाके के लौंडों से बच।

मनुष्य के चक्कर पर चेहरा पर समझे खुद को काटी भक्त है बकर गोट बन गई नारी की कुर्बानी बरसे में अपराधी गोट से ताकत उड़ गए गांधी।

इंस्टीट्यूट छोड़ू इस वर्ल्ड मेरे को भागने का दूर एक दो लोग मेरे को मानते नहीं ग्रुप सर्कल टाइट इधर कुत्ते हैं लूज दिल्ली शहर को ये बात मेरा नूर मांगते नहीं दिल इधर मांगते हैं नूर सुसाइड थॉट मेरा चलता है लूप सिगरेट पी के मेरे को आता नहीं सूर

पुलिस यहाँ पे किधर, धंधे चलते सही, कोई गैरों का नहीं फिकर। ये बॉलीवुड के बच्चे ये लोग समझे नहीं गया पिक्चर। नारीवादी दिक्कत क्या बलात्कारी, भाई की राखी बांधना चाहिए सिस्टर। भरोसा है किस पर, पैदा हूँ उस धर्म जिसमें लौंडे पहनते निकर। गेट पे लगे स्वस्तिक, गद्दी पे भी हिटलर। शांति से नाम मारो कलाकार बने किलर। फालतू का नीने की ये लोग शर्म करे पिक कर। पापों की ये बदबू डियोर का ये तर। कड़वी मेरी बोली में नहीं डालता कोई मिक्सर। नाले में जो लाश उसकी नसों में थी लिखकर। करेंगे जांच कपड़ों के हिसाब, छपेगा नहीं खबर, सब पे डलता फिल्टर। ये आईजी का समाज या बनता नहीं है बीफ, ये है दिल्ली मेरी जान। मैं जहर, बच्चे पीते बारिश।

अर्के पोचा नाम हर स्टेट तू है ना मर्द मालूम है दल दल नहीं नकल बाज तू है असल नहीं साफ दिखे फेक मेरे को बचपन से फेक लॉन्ड कर गस जय